जन्म सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े उन्हें मेनू विखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चोर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख दा मालक ते धरती ते इको ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चोर हो सकता है होर किसी चोर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चोर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चोर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उहने चोर रखे ते चोर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदिआं दास ने पहलो मारी फोटो भवा के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्श

हे साहब जी ए जड़ी रोज अरदास हुंदी आखो सतनाम श्री हे साहब जड़ी रोज अरदास हुंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रचिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चिया वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करौनी पवे रोज सुते सिद पटीशन हो जाए रोज सुते सिद अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागा वाला दिन आना है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड्ड दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे साह आवे केहड़ा आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी कि मेरे गुरु दा उपदेश होगा पियो

0: कड़िए कड़िए मारिए पहली लहर जाए।
1: वेखो बाबा जी का कल वाला बचन आप जी ने सुनिया सी कि दर दरवाजे जाए के, बोलो दर दरवाजे क्यों डिठो।

0: चलो इतना पढ़ लो, राम स्यों कर प्रीत रे मन, राम स्यों कर प्रीत, राम
1: स्यों कर प्रीत
0: गज के,

बड़े प्यारे वचन ने, समझण दी कोशिश करियो। एक बार आखो सतनाम श्री वाहे। खोजद्या खोजद्या ओ अमृत मिल गया। जेड़ा अमृत पीण दे नाल जीव अमृत अमर हो जांदा है। अमृत पीवे अमर सो होए। बोलो अमृत पीवे अमर सो होए। एहो हर रस पावे जन कोए। कोई किते करोड़ां दे विच्चों नहीं ते छोटे छोटे संख्या ने अमृत तो दूर रख लेना है। जेदे ते सतगुरु गरीब नवाज बाबे नानक दा हर दरवाजा मेहर दा जेदे घर नूं खुल गया ओदी रूह ने आखना चलो अमृत छकी है गुरु वाले बनी है। नहीं ते निके निके फुरनिया ने एवें निके निके फुरनिया ने गुरु दे अमृत तो वांझिया कर देना है। एहो हर रस बोलो एहो अमृत की आ हरी दा रस आ। एहो हर रस पावे जन कोए। कोए दा मतलब कोई करोड़ा दे विच्चों जेदे ते मेहरबान बापू होवे ते जिन्हां नूं इह हरी दा रस मिल गया अमृत नाम आ उस हरी दे रस दा ते साहिब कहिंदे ने अमृत पीवे अमर सो होए। अमर हो गया। अमर दे अखरी अर्थ समझो अमर। अमर शब्द आपां कहिंदे कई वार बहुती वार ते पता नहीं हुंदा सानूं। अमर मरन तो रहत जिन्हें हुण मरना ही नहीं। साहब कहिंदे ने इह पक्की गल आ जिस जीव दे मूंह दे विच अमृत पै गया उन्हें नहीं मरना मुड़ के। अमृत पीओ सदा चिर जीवो। हुण सदा चिर वाला जीवन मिल गया। रोज रोज दा आवा गवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुर देव। सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा आवा गवन दा चक्कर आ जीव आत्मा दा जदों गुरु दी शरण विच आउंदी आ गुरु दी पनाह विच आउंदी आ गुरु दी बारगाह विच आण के डिग के अमृत दी दात मंगदी आ अपने बापू दे कोलों ते जन्मां दी विछड़ी होई नूं जदों अमृत मिल जांदा है उस दिन इहदा आउण जाण दा चक्कर मुट गया। आवा गमन मिटे। बोलो आवा गमन। बड़ा ढिल्ला बोलदे हो गज के बोलो। बाबा नानक तुहाडे ते मेहरबान होवे। आखरी दीवान है अज पता नहीं नदी नाव संजोगी मेले ने रस बख्शो। दास नूं भी सेवक दियो सेवा दियो। आवा गमन मिटे। बोलो आवा कदों प्रभ सेव जदों प्रभु दी सेवा विच हाजिर हो गया जदों आप त्याग शरण गुरदेव आपा छड के त्याग के गुरु दी शरण विच जीव आत्मा डिग पई ना आण के ते साहिब कहिंदे ने उदन इहदा आवा गुण मिट गया। इउं रतन जन्म का होए उधार। ए रतन जन्म दा उधार हो गया एदा भला हो गया जीव आत्मा दा। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने ए जिहड़ा हरी दा रस आ जिन्हां नूं मिल गया अमर हो गए। उन्हां मुड़के मुड़ना नहीं। उन्हां ने मुड़के किते नहीं आउणा। कोई जीव आत्मा चक्कर दे विच ना उस दिन तो ए अमर हो गई जिदन तो इहनूं अमृत मिल गया। अनंत अनंत जन्म दी बंदगी करन वाले बहुत सारे लोग जिन्हां नूं अमृत नहीं मिलिया। मैं सतगुरु दी हजूरी विच मेरे गुरु दी फिलोसफी मुताबक कह रहा वां कि उन्हां दा आवागमन नहीं मिटदा जिहड़ियां रूहां अमृत नहीं छकदियां। आखो सतनाम श्री। फिर आउणा पैंदा है फिर आउणा पैंदा है फिर आउणा पैंदा है। कहिंदे जी असीं बाणी बड़ी पढ़दे हां सिमरन बड़ा करदे हां जे अमृत ना छकीए ते साडी गति नहीं हो सकदी। नहीं हो सकदी। ए डंके दी चोट ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज दे विचारां मुताबक दास राव जी दा कह रहा है कि जिन्ना चिर जीव आत्मा अपना सिर दे के गुरु दे चरणां विच मिटदी नहीं जिदन मिट गई उदन बन गई जिदन मिट गई उदनी बन गई। जिन्ना चिर मिटदी नहीं जिन्ना चिर आण के डिगदी नहीं चरणा दे विच उन्ना चिर आवागमन मिटदा नहीं। मेरा सतगुरु गरीब नवाज पातशाह होर इशारे करनगे। आखो सतनाम श्री। मेरे साहब नूं जदों सिद्धा ने पुछया सतगुरु जी तुसीं मैनूं कृपा करके दसना करो कि जे तुसीं हरिद्वार गए हो ते पांडे तुहाडे चरणा उत्ते डिगे ने ध्यान देना है जिती नौ खंड पृथ्वी। बाबे ने कोई एक देश नहीं जितया। बाबे ने दो देश नहीं जिते। ए ते साडी बदकिस्मती है कि धन गुरु नानक पातशाह दे चरणा ते चलण वाले प्रचारक मुक गए। धन गुरु नानक वर्ग वर्गे दरवेश प्रचारक नहीं इस कौम विच रहे। जे हरिद्वार गए ऐसे ज्ञान दे तीर मारे हरिद्वार दे पांडे पैरां ते डिग पए। जे जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी वाले पैरां ते डिग पए। जे मक्के मदीने गए उत्थे मक्का मदीना गढ़ बगदाद नवाए के। बोलो गढ़ बगदाद आ नवाया ना तुसी कहिंदे हो नवा दिता टेलीविजन दे उत्ते रोज अखबारां च पढ़दे हो कि बगदाद नूं नवाता मगर इहनूं नवाउण नूं किन्ना चिर लगा ते की वरत्या।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫਿਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਵੀ। ਬੀਬੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਵਾਰੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਪੱਟਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਨਾ।

0: पिता सम तरला पाओ पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे पिता
1: समझावेंगे पिता समझावेंगे।
0: धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज समझा इन्हां अपने सिखां नूं ए तेरी गोद विच आण के रोज बैंदे ही इन्हां नूं तपदियां सड़दियां नूं होर कोई जगह नहीं मैं होर थां नहीं जिस पे करूं बेनती रोज कहिंदे ही आउंदे भी तेरी गोद विच ही प्यो भी तेनूं मानदे ही साहिब माता नूं साहिब कौर नूं मां भी मानदे ही मगर एक दूसरे दी लत्तां खिंच दई एक दूसरे दे दुश्मन ही है तेरे सिख हे मेरे सतगुरु इस पंथ उत्ते बौड़ी कर हे मेरे गरीब नवाज पातशाह इस पंथ उत्ते तरस खा रहमत कर बौड़ी कर इस पंथ दी इन्हां विच आपस विच प्रेम बख्श कदी तू गुड़ती दे के क्या सी सच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो सतगुरु ए उल्टे चले गई है नफरत कर दई एक दूसरे न हे मेरे गरीब नवाज तुसी गुड़ती दिती सी जन प्रेम कियो ए नफरत कर दई इन्हां नूं तरस कर रहम कर इन्हां दे पैरां तो लैके सिर तक पै कोड़ नूं अपनी नजरे अनायत नाल ठीक कर तरस करो महाराज इस पंथ दे उत्ते ए तेरी शरण विच आण के बाणी पढ़दे ने ना को वैरी ना ही बगाना ए झूठ मारदे ने तेरी शरण विच इन्हां ने सारे ही वैरी बनाए ने इन्हां ने सारिआं नूं बगाने समझिआ है हे सतगुरु ए उत्तों उत्तों कहिंदे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई इन्हां दे अंदरला कोट ठीक करो ए जितना बाहरों सोहणे लगदे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब अंदरों भी सोहणे बनाओ इन्हां नूं हे मेरे मालक इन्हां दा इलाज करो मेरा वैद गुरु गोबिंदा हे मेरे मालक वैद बन के इन्हां दे अंदरले कोट नूं ठीक करो पंथ नूं एक दूसरे नाल प्यार कराओ ए ते सारे संसार नूं गल विच लकड़ी लैके इन्हां कहना सी अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे तुसी ते अमृत छका के भाई कन्हैया जी ने वर्गे प्यारियां नूं कहा सी तू पास हो गया है तेनू कोई बगाना नहीं दिसदा हे सतगुरु असी एक संगत विच बहिके एक थाल दा कड़ा प्रसाद छकन वाले एक लंगर दे विच पंगत विच बहिके लंगर छकन वाले असी मन करके एक दूसरे तो बड़े दूर हो गई सतगुरु तरस खा साडे दे उत्ते मेरे सतगुरु कहन लगे मैं खिमा लै लिया ते मन परमेश्वर दे चरणा विच वेच दिता सिद्धो जिदन तो मैं खिमा लै लिया परमेश्वर कोलों जिदन तो मैं नीवा पान लै लिया परमेश्वर कोलों ते मन जड़ा खराब करदा सी इह वेच दिता है सतगुरु अगे उदन तो खरा खरा आके सब कोई बोलो खरा खरा फिर बोलो जी खरा खरा आके एक दो शब्द हुंदे ने एक खोटा ते एक खरा जिहदे मन विच कोड़ होवे आपां कहिंदे मन दा औगण यारी कंत ना भावे मन की खोटी खोट कमावे मन दा खोटा बंदा खोट कमाउंदा है इत्थे गल्लां कुछ होर करदा है उत्थे कुछ होर करदा है ओ प्यारे ओ किथे तुर जाओगे किथे जाओगे केड़े साहिब दे अगे ओ साहिब दे अगे जाओगे जेड़ा साहिब सतगुर अंदरों निरवैर है सतगुर उस गुरु दे सामने पेश होना जाके जेड़ा अंदरों निरवैर आ उस गुरु दे सामने एक दिन जाके पेश होना है सतगुरु सबना दा भला मनाएदा बोलो सतगुरु उस गुरु दी शरण विच जाना है उस गुरु दे सामने जाना है केड़ा मुंह लेके जाओगे केड़ा कोड़ जाके विखाओगे मालक नूं अपने अंदर नूं शुद्ध करो तरला पाओ एक बार नक रगड़ो आण के गुरु दे अगे हे मेरे सतगुरु मेरे अंदर दी बीमारी ठीक करो मेरे साहिब कहिंदे जिदन तो मैं मन गुरु नूं दे के खिमा उहदे कोलों लै लिया उदन तो खरा खरा आके सब कोई जे मक्के गया वा ते अंदरों बाहरों एक सा ओ अखां वालियां नूं नजर आ गया उन्हां कहा खरा आ गया खरा आ गया ओ पैरी पै गए जिन्हां नूं खरा ज्ञान सुनाया मक्के मदीने वालियां नूं सुनाया मक्के मदीने वाले काजी पैरां ते डिग पए गढ़ बगदाद वालियां नूं सुनाया गढ़ बगदाद नीवा हो गया मुल्तान विच गया मुल्तान वाले पैरी पै गए क्योंकि मन दे दिता सी ते खिमा गुरु कोलों लैके खरा हो गया सा खरा नानक पारख आप बोलो नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया मेरे सतगुरु दे चरणा च बेनती करो मेरे साहब कहिंदे ने सिद्धो ए सारी करामात अमृत दी बनी ए अमृत करके मेरा मन इन्ना शुद्ध हो गया है खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नी जानिया खांदिया पींदिया जिन्हां चिर मुंह दे स्वाद लाए सी उन्हां चिर ते मरन दा ही ना पता लगा उन्हां चिर ते मरन दी जाच ही ना आई ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਬੋਲੋ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ, ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤਾ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਇਤਨਾ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਤਾਂ

पूरन छक लिया अमृत ते आख्या साहबा मैं हुण की करिया करा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु आख्या जोड़े झाड़िया कर की आख्या हां इना हथा नू बहुत कुछ लग चुकया है सोचो इना हथा नाल किनिया बेईमानिया कीतिया ए हथ किन्ने अपवित्र ने ए हथ पवित्र उदो ही होने ने कर हर कर्म कर ए कर कहिंदे हथा नू जिदने हरी दे कर्मां च लग जाणगे हथ झाड़न जोड़े झाड़नगे गुरु गोबिंद सिंह साहब नू पुछया इन्हें छोटी जी आत्मा ने आख्या सतगुरु तू मैनू अमृत दिता है हुण मैं करिया की करा ते आखण लगे मेरे आ पुत्रा जोड़े झाड़िया कर संगत दे जोड़े हुण नहीं कोई कहिंदा ये गल जे अपने जीवन नू मुबारक बनाउणा है जे आपां अंदरों जिन मारना है जे अंदरों बैठे सप नू मारना चाहुणा है हौमे रूपी सप नू मारना चाहुणा है अंदरों ओ जिहड़ा मन शैतान बैठा जे उहनू खत्म करना चाहुणा ते जोड़े झाड़िया कर अच्छा सतगुरु जोड़े झाड़ना बड़ा वड्डा पुन्न आ हां पुत्र जोड़े झाड़ना बड़ा वड्डा पुन्न आ इह प्यो कह रिहा पुत नू ते पुत कहिंदा जी होर की करिया करां जे टाइम मिलिया करे ते फिर संगत दे जूठे बर्तन साफ करिया कर आख्या महाराज ओ की करू ओदे नाल की होऊ ते मेरे सतगुरु ने आख्या जोड़े झाड़न दे नाल ते मन साफ हुंदा ही आखो सतनाम श्री जदों संगत दे जोड़े साफ करे जिन्ने घुट के जोड़े साफ करिए उन्हें मन की मैल लादी हौमे मिटदी जांदी ते अंत च करन शुद्ध हो जांदा जूठे बर्तन साफ करन नाल एक दिन फिर गुरु प्यारे हो जोड़े साफ करन रहा सी ते मेरे कलगीधर पातशाह सिर दे उत्ते खलोते सी उहनू नहीं सी पता कि जिहदे नूं अमृत दे दिंदा फिर उहनू कहिंदा खालसे के हो साध साध संगा बोलो खालसे के हो साध साध ओनू बच्चे नूं पता नहीं सी ओ सिर ते ही खलोता सी तुहाडे मेरे जिन्हां ने अमृत छकिया वा गुरमुख प्यारे हो जे चंगे कर्मा करके गुरु कोल खलोता ते बुरे कर्म नूं भी वेख रहा गुरु बुरे कर्म कर लगे भी नर अचेत पाप ते डर रे हे अचेत नर पाप कर लगा डरिया कर उदों भी चेते करिया कर गुर

एक बार भैनो बचियो तुसी भी पढ़ो, जदों कदे परवटे कटाउन कोई लगे, जदों कदे कोई कर्म कर लगे बची बच्चा, उदों सानू पता लग जाए अंतर जामी जान मेरा प्रभ

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जोगाद सच खैपी सच नानक खुशी पे सच।

सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैति सच नानक खुशी भी सच

शपर तुट में हो हरिदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़ है वसी रब हयाली है जंगल क्या टूंडे हैं हरिदा इन्नी निकी जंगी है थाल डूंगर पव्यों आज फरीद कुजड़ा सैकों हाथियों फरीदा इन्नी निकी जंगी है

इन समय सिमरंत नानक राम दमोदर मधुवे वाहे गुरु साहिब जीयो फरीदा दर दरवेशी गखड़ी चला दुनिया पत बन उठाई पोटली किथे वंजा कत फरीदा दर दरवेशी गखड़ी

किजना बूझ है किजना सूझ, दुनिया गुजी पाहे। साई मेरा चंगा कीता, नाही ता हम भी दजा आहे। साई मेरा चंगा कीता, नाही ता हम भी दजा आहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो, आप सरवण कर रहे सी भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों, उन्हां दे मुबारक हिरदे विचों उठे हुए वलवले और उन्हां दी मुबारक रसना दे कहे हुए बचन। भगत फरीद साहब जी दी बाणी नू बहुत ध्यान दे के पढ़िए विचारीए ते भगत फरीद साहब जी ने अपनी रसना दे नाल जो बचन कहे, उन्हां बचना दे अंदर दुनिया दे बहुत सारे विषयां नू छोण दा यतन कीता। कदी किसे सलोक दे अंदर मौत दा जिकर, किसे सलोक दे अंदर जीवन दा जिकर, किसे सलोक दे अंदर गुनाहां दा जिकर, किसे सलोक दे अंदर गुणां दी गल, किसे सलोक दे अंदर पखंडवाद दी चर्चा, किसे सलोक दे अंदर परमात्मा हृदय दे अंदर है इस गल दी चर्चा। भगत फरीद साहब जी ने बहु पक्षी जीवन नू बहु पक्खां दे नाल वेख के सुधारन दा यतन कीता है। जिस भी पक्ष तो भगत जी नू कोई कमी पेशी आम दुनिया दे जीवन दे अंदर नजर आई, रड़कदी दिसी, उसे ही एंगल तो तमाम भगतां ने अपनी अपनी बाणी दे जरिए, गुरु साहिबाना ने अपनी बाणी दे जरिए मनुखता दी झोली दे अंदर उच्चा ते सुच्चा ज्ञान पा के मनुखता नू नवाजिया। अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी दा उपदेश कहन लगे, फरीदा दर दर वेशी गाखड़ी। दरवेश दा अखरी अर्थ हुंदा है रब दे दर दे उत्ते खड़ा हो के मंग करन वाला रब दा मंगता, रब दा जाचक। दरवेश दा अखरी अर्थ ए हुंदा है। पर आम किसे दूसरे दरवाजे ते नहीं, किसे बादशाह दे दरवाजे ते नहीं, जो परमात्मा दे दर ते खड़ा होवे और मंग भी करे केवल इको ही, परमात्मा तेरे मिलाप दी चाहना है, होर कोई चाहना बाकी नहीं बचे। उनू कह देंदे ने दरवेश, दर दर वेशी गाखड़ी चलना दुनिया पाता। कह लगे आम मनुखता दे अंदर विचरदियां होया नजर मैनू ए आया कि मनुखां दे नाम दे नाल लफज ते दरवेश जुड़िया या दरवेश लफज जोड़िया गया, पर उन्हां दी तरजे जिंदगी नू वेखो, जीवन दी चाल नू वेखो, ते ओ आम दुनियादारां वाली चाल उन्हां दे जीवन विचों नजर पैंदी है। इत्थे मैं एक दो बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करदा चलां। अगर गुरु साहिबाना नू भगत जना नू आपां बाहरों वेखीए ते बाहरों वाकई दुनिया वर्गी चाल है, कोई फर्क नहीं है। और भगत दी चाल एक दरवेश दी चाल बाहरों रहनी भी आम दुनिया वर्गी चाहीदी, पर अगर अंदरों वेखो ते अंदरों नरोल खुदा दे नाल मिले हुए खुदा वर्गे नजर पेंदे ने। अगर अंदरों वेखो बाहरी तौर दे उते गुरु साहिबाना तो मैं गल प्रारंभ करा, बाहरी तौर दे उते वेखो असी भी ग्रिस्ती ते साडे दसे दे दसे गुरु साहिबान ग्रिस्ती। अगर ग्रिस्त मार्ग नूं अख्तियार नहीं कीता उमर दे तकाजे दे नाल तन श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जी ने ग्रिस्त मार्ग नूं प्रवान नहीं कीता,
इस तरह नहीं के उन्हां ने रिदे विचों परवाह नहीं कीता उमर दे लियाजे दे नाल उस मार्ग नूं अपना ना सके। तकरीबन पौने 8 साल दी उमर दे अंदर ते ज्योति जो समा जांदे ने 8वें हजूर गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज। और फिर मैं एक होर भी बेनती करा, तकरीबन 22 साल दा लम्मा समा 4 उदासियां दे अंदर 4 फेरियां दे अंदर तकरीबन 22 साल दा लम्मा समा धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी घरों बाहर भी रहिंदे ने और आए भी जगत जलंदे नूं ठारन वास्ते ने। ते फिर ए भी कोई नहीं कह सकदा कि धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे मुबारक पवित्र हिरदे दे अंदर कोई मैल दा अंश बाकी सी। मैल उन्हां दे नेड़े तेड़े नहीं है, वासना उन्हां दे हिरदे विच बाकी बची नहीं है, कोई आश कोई तरंग कोई उम्मीद उस पवित्र हिरदे दे अंदर नहीं है। उन्हां दे कोल इस मार्ग नूं अपनाउण वास्ते समां भी नहीं। मैं अज जिहड़ियां बेनतियां करनियां ने या गुर इतिहास विचों ते या गुरबाणी नूं आधार बना के मैं अपने कोलों कुछ भी कहण दा यतन नहीं करना क्योंकि विषय ही बड़ा पेचीदा विषय है। तो खैर, गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे कोल समा ना हुंदिया होया वी फिर भी उन्होंने इस मार्ग नूं अख्तियार कीता, मार्ग नूं अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि आउण वाले कल नूं जो लोग मेरे मगर मगर चलदे आ रहे ने उन्हां नूं इह कहण दा समा ना मिले कि ग्रिस्त मार्ग माड़ा हुंदा है, ग्रिस्त मार्ग बुरा हुंदा है। उन्हां नूं इह कहण दा समा मिले ना क्योंकि अक्सर असीं चलने अपने वड्डियां वडेरियां दे चिहन कदमां नूं वेखदे होए। अक्सर आपां चलने आ जिहड़े वड्डियां वडेरियां ने पूरने पाए ने, गुरु साहिबानां ने, पैगंबर जणा ने जिथे कदम टकाए ने उन्हां कदमां दे चिन्ह वेखदे होए, मेरा मतलब उन्हां गल्लां बातां नूं मनदे होए, उन्हां नुक्तियां सिद्धांतां नूं अपनांदे होए अक्सर मनुख चलदे ने। अगर कोई हिंदूइज्म दे अंदर चल रहा है तो श्री राम ते श्री कृष्ण जी दी गल करके चल रहा है। अगर कोई बुद्ध धर्म दे अंदर चल रहा है तो वह गल करदा है पहला महात्मा बुद्ध दी, महात्मा बुद्ध इस तरह चलदे रहे, महात्मा बुद्ध इस तरह करदे रहे, फिर वह जीवन की चाल चलनी शुरू कर देंदा है। अगर कोई जैन मत दा धारनी बन के चल रहा है वो यही एग्जाम्पल देंदा है कि साडे महावीर जैन तकरीबन अज तो 2500 साल पहला कहन लगे वो आए ते उन्होंने इस तरह दुनिया दे अंदर मृत मंडल दे अंदर आके लोगों नूं उपदेश दिता, इस मार्ग दे पांधी बन के चले ते जैनी कहिंदे ने असीं तां चल रहे हैं। हुण कोई सिख नूं पुछे भी तुसीं किस मार्ग ते चलना चाहोगे ते सिख दे कोल यही जवाब होएगा ना कि असीं गुरु नानक साहब जी दे बनाए मार्ग ते चलांगे, होर ते कोई जवाब नहीं है ना कि गुरु नानक साहब जिस मार्ग ते चले असीं उस मार्ग ते चलांगे। फिर गुरु नानक पातशाह महाराज जी ग्रिस्त दे मार्ग दे अंदर भी चले ने। ग्रिस्त दे मार्ग तो उपराम होना गुरमत दा असूल भी नहीं ते गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दा बख्शिया सिद्धांत भी नहीं। अगर कोई ग्रिस्त मार्ग नूं छड के चलन दा यतन कर रहा है मैं ही कहांगा वो पहले कदम दे उत्ते भटकदा होया नजर पै रहा है, पहले कदम दे उत्ते थिड़क गया है क्योंकि गुरु साहिबाना ने जद ये मार्ग अपनाया है असीं इस मार्ग नूं नफरत करनी, असीं इस मार्ग नूं माड़ा कह के इस मार्ग नूं छड देना ते एक दूसरा मार्ग अपना के अपने आप नूं ज्यादा पवित्र जान लेना, दूजियां नालों महान ते अगे मन लेना, ये साड़ी अपनी अग्ञानता या साड़ी अपनी भुल है। गुरु पातशाह ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रहे, गुरु गोविंद सिंह पातशाह ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रहे, दसे गुरु साहिबान ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रहे, जिन्हें आप भगतां दी बाणी ग्रिस्ती होए ने, बाबा फरीद साहब जिन्हां दे सलोकां दी व्याख्या मैं लड़ीवार तुहाडी अरज कर रहा, बाबा फरीद साहब जी दे भी 6 लड़के ने ते 2 लड़कियां ने, 8 संतानां नूं जन्म दिता है भगत फरीद।

किधरे अहंकार, किधरे मोह, किधरे लोभ, किधरे निंदा, किधरे चुगली, ए सारे इस ताक दे अंदर ने कि कदों एदा गंड नालों ध्यान हटे, जेड़ी पीटी करके गंड बद्दी है उहदे नालों एदा ध्यान परां हटे ते असीं इहदी गंड नूं खोल दईए, इन्हां दोवां दे अंदर दूरी पैदा कर दईए, पति ते पत्नी दे अंदर, परमात्मा ते आत्मा दे अंदर असीं ना दूरी बना के रख दईए। हुण दूसरी बेनती, आपां अक्सर एक गल कहिंदे आ और पंजाबी दे अंदर ठेठ भाषा विच इह गल आम वरतों विच आउंदी, बई जे मैनूं पता हुंदा बई मेरा इत्थे आउण तों बाद नुकसान ही होणा है ते मैं इत्थे कदी आउंदा ही ना, कहिंदे आ ना बई जे पता हुंदा, जे मैनूं पता हुंदा कि आ चीज खाण दे नाल मेरे तन दे अंदर रोग वधना है ते इह पदार्थ मैं भुल के मूंह तक लै के जांदा ही ना, इह कहिंदे ना जे पता हुंदा, जे पता हुंदा भी ऐस मार्ग ते चलन तो बाद अज एक्सीडेंट होना है ते मैं इस रोड दे उत्ते कदी निकलदा ही ना, जे पता हुंदा कि बोस दे सामने ऐ कुछ बोलन तो बाद रोजी रोटी बंद होनी है ते मैं कदी गला उच्चा करके बोलदा ही ना, ये कहने ना भी जे पता हुंदा, ए ना कहना पै कि जे मैनू पता हुंदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बाणी रच के साडी चोली दे अंदर पाई, तेरी जे नू खत्म करन वास्ते, तेनूं इह बहाना ना मिले कि तू इह कह ही ना कि जे मैनूं पता हुंदा। सतगुरु जी बयान कर रहे ने इस तरह हुंदा है, तेरी गंढ नूं खोल देणगे ते सारे दे सारे औगण, तू इह ना कह कि जे पता हुंदा, सतगुरु पता दस रहे ने ते पता बोलदियां, पता सुनदियां, पते नूं जाणदियां, ज्ञान दियां गल्लां करदियां, ज्ञान दियां गल्लां सुनदियां, ज्ञान नूं पढ़दियां पढ़ाउंदियां, फिर भी बंदा गहरी खड्ड वकारां दी खड्ड दे अंदर अपना आपा डेग के नष्ट कर ही लैंदा है। क्यों कर लैंदा है? हालां इहनूं पता भी है। ते कबीर साहब ने ते ऐलानिया कह दिता, उह कहिंदे ने मन जानत सब बात, जानत ही औगण करे। इह नहीं कह सकदा मैनूं पता नहीं है, पता तैनूं है तू जान के औगण करदा है। भगत कबीर जी इस तरह कहिंदे ने, मन जानत सब बात, जानत ही औगण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं परे। कहन लगे ओ बंदा खूह विच डिग पै जिदे दो नेत्रां विच वेखण वाली जोत नहीं, जिन्हों आपां नेत्रहीन कह दीए, अन्ना कह दीए, अन्ना चलदा चलदा खूह विच डिग पै, लोक हमदर्दी करनगे। क्यों करनगे? भी इह विचारा नेत्रां तों बगैर है, नेत्रहीन है, इहनूं दिसदा नहीं, तां खूह दे अंदर जाके डिगा है। ते जे नेत्र भी काम करदे होण, होवे भी दिन दा प्रकाश, रात दा हनेरा होवे, ते कोल चानने दा इंतजाम होवे, लालटन हथ विच होवे, ते फिर भी खूह विच डिग पवे, ते फिर ते लोक हमदर्दी नहीं ना करनगे, फिर गालां ही कढ़नगे ना, वेख के नहीं चलिया जांदा, मोटे मोटे अखां लै के चल रहा है, इन्हां नेत्रां तों काम लै, वेख के चल। भगत जी कहन लगे तेनू दिसदा है, तू जानदा है, हाथ दीप, हाथ दे अंदर चानना है, दीवा है, फिर भी खूह दे अंदर डिग रहे हैं, गलती तेरी है। गुरु नू दोष ना दे के सतगुरु तू कृपा नहीं कीती, गुरु ने कृपा कर दिती है, तू कृपा लैण दे योग आप बाणी नहीं रहा। गुरु ने कृपा कीती तुहानू जन्म दिता है ना, गुरु ने कृपा कीती है ते तुहानू गुरुद्वारे आउण दा समा बख्शिया है ना, हुण कुछ आप भी ते करना चाहीदा। कोई बंदा परोस के भोजन तुहाडे थाल दे अंदर तुहाडे सामने लिया के रख दवे, चलो मन लो के कोई बुरकी बना के तुहाडे मुंह विच भी पा दवे, खाना ते तुहानू ही पैना है ना, अंदर लेके ते तुहानू ही जाना पैना है ना, कुछ ते करना ही पैना है। जेडे नहीं करदे उन्हां दी उंगली सीधी उठदी है जी गुरु ने कृपा नहीं कीती, गुरु दी केड़ी कृपा मंग रहे हो, मनुखा जन्म तुहानू दिता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गे महान गुरु दिते ने, ते गुरु दी कदरों कीमत नूं ना जानो ते दोष गुरु दा नहीं, दोष साडा अपना है। खैर भगत जी कहिंदे ने जे जाना लड़ छिजना, जे मैं जानदा हुंदा कि विकारां दे नाल मेरा लड़ छिज जाना है, बनी हुई गंड खुल जानी है, पीटी पाई गंड, गंड नूं मैं होर घुट के बनदा ते उस गंड दा ध्यान रखदा, इस गंड नूं कोई काम क्रोध लोभ मोह खुलन दा यतन ते नहीं कर रहे, पीटी पाई गंड, तै जेवड़ मैं नाहे को सब जग डिठा हंड। हे मेरे साईं वाहिगुरु निरंकार परमात्मा जी, मैं सारा जगत ना

0: हंड के वेख लिया, हंड मैंने चल के, हंड मैंने तुर फिर के, विचर के, मैं सारी दुनिया घूम फिर के वेख ली, तेरे वर्गा ना ते कोई दयालु मिलिया ते ना कृपालू मिलिया, ना तेरे वर्गा कोई मददगार मिलिया, ना तेरे वर्गा कोई रक्षक मिलिया, ना तेरे वर्गा कोई रिजक दाता मिलिया, रोजी दहिंद मिलिया, तेरे वर्गा कोई सज्जन नहीं मिलिया। सब जग डठा हंड, भगत जी कहिंदे ने गली सो सज्जन भी एक टुंडेंदी ना लहां तुखां ज्यों मली, गली बाती हौसला देन वाले मलम पट्टी करन वाले भी सज्जन मिलदे ने, पर उस रोह नूं मिटाउण वाला दर्द तों राहत देन वाला ते भगत जी कहिंदे ने कोई बिरला बिरला ही मिलदा है ना। कबीर साहब भी कहिंदे ने कबीर सब जग हों फिरियो, मंदल मंदल मैंने कंधा मुढ़ा, मंदल कंध चढ़ाए, कंध मैंने कंधा, मंदल मैंने टोल, कह लगे मैं टोल अपने कंधे दे उते रख के बजा के दुनिया नूं घूम फिर के वेखिया, मंदल कंध चढ़ाए कंधे दे उते, मंदल रख के कंधे दे उते टोल रख के, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए, कहन लगे कोई किसे दा नहीं मैं ठोक बजा के वेख लिया, परख पड़ताल करके वेख लिया, आखिया तैं जेवड मैं नाहे को, तेरे वर्गा साई जी रब जी कोई भी नहीं है, नाहे को दुनिया दे अंदर तेरा सानी कोई नहीं, सब जग डिठा हंड, ते ए गल मैं सारे जगत नू हंडन तो फिरन तो विचरन तो बाद कह रहा, तजर्बा करन तो बाद कह रहा। हुण ए मर्जी साडी है कि जिस खुदावंद करीम वास्ते भगत जी कह रहे ने तैं जेवड़ मैं नाहे को, उदे नाल जुड़े रहना है या उन्हूं छड़ के किधरे सज्जे खब्बे भटकना है, ए मर्जी तुहाडी है। भगत फरीद साहब ते उस दीन दयाल दियां कथा कहानियां कर करके साडी झोली दे अंदर उपदेश पा रहे ने। तो ये दो श्लोक जिन्हां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां करन दा निमाणा यतन कीता गया, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन, जिन्ने माई भाई श्रोते गुरु की गोद दा आनंद लै रहे हो, सबना दे मना अंदर सतगुरु गुरमत ज्ञान दी बख्शिश करन, अज्ञानता वाला हनेरा दूर करन, तमाम
1: हे प्राण नाथ गोविंद कृपा निदान जगद गुरु, हे संसार ताप हरण करुणा मैं सब दुख हरू, हे शरण जोग दयाल दीना नाथ मया करू, शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधुवै, वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा

इच्छा रह दूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग, मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निघी गोद दा आनंद माण रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां एकागर करके गुरु दरबार विच बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। एक नुकता हमेशा ध्यान दे अंदर रखन योग है, एक वक्त दे अंदर एक कम करन दी अपने आप नू आदत पाओ। ऐस वक्त तुसी ना ते दुकान उते हो, ना ऑफिस दे अंदर हो, ना अपनी कोई होर किरत विरत कम धंधा ही कर रहे हो। शरीर करके इस वक्त कोई होर कम धंधा करना भी चाहो ते कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर ते गुरु दरबार विच है। तो फिर जे शरीर गुरु दरबार विच है ते फिर इस तरह का सुभाव बनाओ कि उन्ना समा मन भी गुरु दरबार विच ही रहे। इस वक्त अगर मन करके तुसी ऑफिस वे चले गए, दुकान ते चले गए, किरत विरत वे चले गए, वो भी नहीं होएगी ते जो इत्थे हो रहा है वो भी पल्ले नहीं पाएगा, उहदा भी लाभ पूरा पूरा नहीं मिलेगा। जितना समा गुरु दरबार दे अंदर तन हाजर रहे यतन करना चाहिदा है, उन्ना समा नाल लगदा मन नूं भी बिठाउंदा। कोई कम विगड़दा होवे उठ के जा सकदे आ, तन करके भी चलो, मन करके भी उत्थे रहिए, पर जिन्ना समा इत्थे हां इत्थे ही रहिण दी कृपा करिओ। चल रही लड़ी वार कथा विचार भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों आप रोज सवेर दे वक्त सुनदे आ रहे हो। अज जो दो सलोक बाबा फरीद साहब जी दे आप संगतां दे सन्मुख पढ़े गए, पहला श्लोक है फरीदा जां तो खट्टन वेल तां तू रत्ता दुनी सिओ। कहन लगे जेड़ा खट्टी खट्टन दा वेला सी, खट्टन मैने कमाउन, वेल मैने वकत, जेड़ा खट्टी खट्टन दा वकत सी, लाभ कमाउन दा वकत सी, तां तू रत्ता दुनी सिओ। उस वकत ते तू इधर ध्यान ना दिता ते दुनियादारी दे तंदे दे अंदर उलझिया रहा। कहन लगे ध्यान ना दिता। एक बेनती मैं होर भी करा, उम्र दे तकाजे दे नाल हर कम करन दा अपना अपना साडे समाज दे अंदर विहार प्यार बनिया है। उम्र दे तकाजे दे नाल बचपन दे अंदर साडी जिम्मेवारी स्कूल दे अंदर जाके चार अखरां दी तालीम लेनी है ते बच्चा स्कूल दे अंदर चला जांदा है। जवानी दे अंदर किरत विरत धंधा करना ते बंदा कर रहा है। बुढ़ापे दे अंदर चाहिदा है कि चलो जो हुण कमाया है आराम दे नाल उनू बह के भोगे भी, धीआं पुत्रां दे अंदर बह के आराम दे नाल चल पाए, और इस तरह होना भी चाहिदा। परमात्मा सब दीआं लोड़ां पूरीआं भी करे। अर्ज मैं ये करनी चाहुंदा सां कि बचपन दा समा पढ़ाई वास्ते तलीम वास्ते बकायदा नियुक्त है। ते जे बंदा ये गल कहे कि बचपन ते मैं अचेत पुणे दे अंदर गवा लवां, बच्चे नूं स्कूल की तोरना है, बच्चा रोंदा है, बच्चे दा मन नहीं करदा, इनू स्कूल ना तोरीए, जेड़े मां बाप बच्चियां दे उत्ते इस तरह की दया कर जांदे ने, उन्हां दे बच्चे उन्हां नूं सारी उम्र वास्ते कदी बख्शदे ने, जदों बच्चे वड्डे होणगे बख्शणगे नहीं। अगर तुसी जवाब वजों ये गल कहो कि बेटा उदों तू रोंदा बड़ा सी, तेनू तां स्कूल विच नहीं तो रहा, उदों तेनू रोज रोज स्कूल विच लालच दे के जिद करके भेजना पैंदा सी, तू जाके राजी नहीं सी होंदा, रोंदा बड़ा सी, असी सोचिया कि चलो तेनू स्कूल विच ना ही तोरीए, शायद ये घटना तेरे लिए दुखदाई होवे, दुख वाली होवे। ते बच्चा अगों परतवा जवाब यही देगा कि मैं बेसमझ सी, मैनू समझ नहीं सी,
मैं सी उस वक्त न्याणा, मां बाप नूं इह गल कहेगा तुसी ते न्याणे नहीं सी ना, तुहानूं ते पता सी ना मेरी उमर है पढ़ाई करन दी ते मैनूं पढ़ाया क्यों ने, मेरी उमर है स्कूल दे अंदर जान दी ते मैनूं भेजिया क्यों ने। ठीक है मैं रोंदा सा, मेरा रोना तुसी वेख लेना सी, मैनूं चिड़क दे के लोरी दे के किसी भी ढंग दे नाल तोर दे, मेरा पड़ा इसे अंदर ही सी। जो बच्चा जीवन दे अंदर बालपन दे समय नूं अजाई गवा लैंदा है खेडां दे अंदर या सौं के अचेत पुणे दे अंदर अपने ओ समय नूं बर्बाद करदा है, ओ जवानी दे दौर विच पहुंच के ना ते सफल इंसान ही बनदा है, ना डॉक्टर ना टीचर ना साइंटिस्ट ते ना चंगी जॉब दा ओनू आसरा ही मिलदा है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जॉब मिलनी है अगे आड़ के, ओदा बेस बनाउन वास्ते है बालपन दा समा, ते जिस मकान दी बुनियाद ही नहीं जिदा बेस ही नहीं ओ मकान खड़ा के सासरे दे उत्ते होवे। असी ये ते चाहुंदे आ कि पक्के महल साडे उसरन, पर यह नहीं चाहते कि ओदियां बुनियादां भी पक्कियां बनाईयां जान। एक बेनती मैं करदा चला, पक्कियां बुनियादां दे सहारे पक्के गगन नूं गोसा देन वाले मकान उसारे जांदे ने, जिन्हां मकानां दियां बुनियादां रेते दे नाल भरियां ने कच्चियां ने उन्हां बुनियादां दे सहारे पक्कियां इमारतां उसरदियां भी नहीं, पक्कियां इमारतां खड़ियां भी नहीं होंदियां। बेस बनाउण दा एक समां हुंदा है। अगर किसी ने पढ़ लिख के वकील बनना है तो उन्हें बड़े लंबे समय तो पढ़ाई दे अंदर रह के किताबां दे नाल मगजमारी करके अपना बेस कायम करना पैंदा है, मैं आउन वाले कल नूं वकील बनना है, उन्हें अपना आधार पक्का बनाउना पैंदा है, ते जिहदा आधार कोई नहीं वह वकील भी पक्का कोई नहीं। दूसरी बेनती, जिसने डॉक्टर बनना है ओदे पिछे भी बड़ी साधना बड़ी मेहनत दिन पर रात दा जागना मां बाप दा पैसा अपना समा सब कुछ खर्च करके तां किधरे एक दिन जाके ओ डॉक्टर या साइंटिस्ट दी डिग्री पा लैंदा है। एक होर बेनती उदाहरण वजों मैं करदा चला, तुहाडे सामने गुरु के कीर्तनीए बह के कीर्तन करदे ने, उन्हां दा गला ते बाजे दी सुर ए दोवें बड़े ताल मेल विच हुंदे ने, ते जे गला किसी होर पासे नू बोले ते वाजे दी सुर हारमोनियम दी सुर दूजे पासे नू बोले ते ना गाउण वाले दा आनंद है ते ना सुनन वाले श्रोते दा आनंद है। सुर दे अंदर खुब के गाउणा पैंदा है, पर उस सुर दे नाल गले नू मिलाउण वास्ते उहनां दी मेहनत वेखो उहदे पिछोकड़ विच किन्नी खड़ी है। इह नहीं कि पहले दिन आण के किसी ने दस्सिया कि ऐ वाजे दियां सुरां ने इहदे उत्ते हथ रख आवाजा आवाज कढेगा ते तू नाल कह देना सा रे गा मा पा धा नी सा, तू ये सुरां बोलनियां शुरू कर देनियां ने, सरगमां कहनियां शुरू कर देनियां ने। एक दिन एक सरगम नू बोलण दे नाल या उहदे उत्ते उंगल रखण दे नाल बंदा मुकाम ते नहीं पहुंचदा। पता नहीं एक ही सुर नूं हजार हजार वरां इस तों वी ज्यादा ज्यादा वार गले विचों बाहर कढ़ना पिया बोलना पिया, उहदे नाल गला जा के तां मैच करदा है, गला जा के उहदे नाल तां मेल खांदा है, वरना सुर होर कुछ कहिंदी है ते गला होर कुछ कहिंदा है। तुहाडे कोल आवाज भावें किन्नी भी चंगी होवे पर जिन्ना समा उस आवाज नूं तराशिया ना जाए उह चंगी आवाज भी भद्दी लगदी है, आवाज दे अंदर खराश होवे आवाज किस तरह दी होवे पर मेहनत कर करके उस आवाज नूं तराशिया जाए आवाज नूं सवारिया जाए गला बिल्कुल समर जाए ते उह समरिया होया गला भी मिठा लगदा है भावें उह गाउण दे योग ना भी होवे, मेहनत उहनूं सवार के रख देंदी है। मेरे कहण तों मतलब है मेहनत बेकार गले नूं भी सवार के रख देंदी है, मेहनत माड़े मनुख नूं भी महान बना देंदी है। मेरा प्रश्न तुहाडे उत्ते इह है कि तुसी अपने आप नूं सवारन वास्ते किन्नी मेहनत कर रहे हो, और इहदा जवाब तुसी मैनू ना दिओ अपने आप नूं ही देना है। प्रश्न मैं तुहाडे सामने कर दिता है, तुसी अपने मन नूं सवारन दा किन्ना कु यतन कर रहे हो, किन्नी कु मेहनत कर रहे हो। मैं फिर बेनती करा, अति बेकार गाउण दे योग जो गला नहीं, मेहनत करके वह गला मिठा बन जाता है सुरीला बन जाता है। तुसी अपने मन नूं तरतीब सुर ताल दे अंदर करन दा किन्ना कु यतन कर रहे हो। भगत फरीद साहब जी कहन लगे जिहड़ा यतन करन दा समा सी
ओदो यतन कीता नहीं, फल झोली विच पिया नहीं, ते जद फाली झोली विच नहीं आया ते फिर बंदा रोंदा बड़ा है जी, दूजे नूं दातां मिल रही ने ते मैनूं मिल क्यों नहीं रही, दूजे का दामन भरिया नजर आ रहा है ते मेरा खाली क्यों।

हां बुलारे हां जो कुछ हां इस विचकारले समय दे अंदर जब जन्म होया ते जन्म दे नाल केवल एक मनुखी बच्चे दा जन्म होया होर कुछ भी नहीं। कदी किसी ने गल नहीं कही कि डॉक्टर दे घर दे अंदर बच्चे दा जन्म होया है ते जन्म लेंद्या सार ओ भी डॉक्टर है। जन्म लेंद्या सार बस वो एक बच्चा है डॉक्टर नहीं है। कदी ये गल सुनन विच नहीं आई कि एक विज्ञानी साइंटिस्ट दे ग्रह विखे एक बच्ची जां बच्चे दा जन्म होया ते ओ बच्चा जन्म तो लैके ही साइंटिस्ट है विज्ञानी है। जन्म तो लैके बच्चा विज्ञानी नहीं केवल बच्चा है। एक टीचर मां टीचर पिता इस तरह के मां बाप दे घर दे अंदर जन्म लेके आउन वाला बच्चा जन्म तो टीचर नहीं वो बस केवल मनुखी बच्चा है। जन्म दे नाल वो कारोबारी भी नहीं जन्म दे नाल वो व्यापारी भी नहीं जन्म दे नाल वो पढ़िया लिखिया भी नहीं जन्म दे नाल वो कुछ भी नहीं। जो कुछ बने वो जन्म तो बाद जो कुछ बने वो मौत तो पहला इस विचकारले समय दे अंदर। इनू मैं इस तरह बेनती करा कि मां दे गर्भ दे अंदरों जद बच्चे दा जन्म हुंदा है ते एक अनघड़े पत्थर वर्गे बच्चे दा जन्म हुंदा है। अनघड़े पत्थर वर्गे अनघड़िया पत्थर आप 2-4-5 किलो दा एक माने क्वांटल दा पत्थर चुको अनघड़िया पत्थर ते उस अनघड़े हुए पत्थर नू बाजार दे अंदर वेचण वास्ते निकल जाओ ते बाजार दे अंदर अनघड़े पत्थर दी कौन कीमत देगा। बड़े पत्थर दुनिया दे अंदर रुलदे ने पहाड़ां दे पहाड़ पए ने सड़कां दे किनारे मील पत्थर ने कौन ओदी कीमत चुकाएगा जो पत्थर घड़िया नहीं। पर उही पत्थर जद एक सियाने कारीगर दे हत्थां विच चला जांदा है वो पत्थर तराशिया जांदा है पत्थर घड़िया जांदा है ते फिर उनू बाजार दे अंदर लेके जाओ फिर ओदी कीमत देन वाले सैकड़े मिल जाणगे। अनघड़े पत्थर दी कीमत नहीं पैंदी घड़े होए पत्थर दी कीमत पैंदी। उही अनघड़िया पत्थर एक तस्वीर बन जाए तस्वीर दे उत्ते चंगे चंगे रंग उडेल दिते जान भर दिते जान ते ओ मन मोहनी तस्वीर दे गाहक ते मार्केट दे अंदर बड़े ने। पर अनघड़िया बिगड़िया तिगड़िया पत्थर इस तरह दे पत्थर दे गाहक कौन ने। मां दे गर्भ विचों जद भी बच्चे दा जन्म हुंदा है अनघड़े पत्थर वर्गे बच्चे दा जन्म हुंदा है। उस तो बाद मां बाप दी संगत मां बाप दा घर दा बनाया होया माहौल इस तरह बच्चे दे संस्कार कर्म धर्म बनने आरंभ हो जांदे ने। उस तो बाद फिर बच्चे नूं जिहड़ी जिहड़ी संगत मिलदी है जिस तरह दी संगत मिलदी है वो अपने मन नूं तिवें दा करना शुरू कर देंदा है। एक मैं होर बेनती करा लोहे नूं जद भी कोई मोड़ तोड़ के हथौड़े दियां चोटां मार के सट्टां मार के कुछ बनाउंदा है पर लोहा गर्म होवे लोहा उस तरह ही बनना शुरू हो जांदा है पर गर्म होवे ठंडा नहीं। गर्म लोहा वैसे ही अपने आप नूं ढलना शुरू कर देंदा है जिस तरह उहदे मालक दी मर्जी हुंदी है बनाउण वाले दी मर्जी हुंदी है। मन भी साडा इस तरह दा है इनू जिस तरह की संगत दे अंदर आप लेके चले जाओ मन भी तिवें तिवें ढलना शुरू हो जाता है। इनू जुआरियां दी संगत दे अंदर ले जाओ उन्हां दा रंग कबूलना शुरू कर देंदा है। चोरां दी संगत दे अंदर लेके चले जाओ वह रंग कबूलना शुरू कर देंदा है। इनू गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे अंदर लेके आ जाओ ते सहजे सहजे ये रंग कबूलना शुरू कर देंदा है। ए मन अपने आप नूं तिवें ही मोड़ देना शुरू कर देंदा है जिस तरह दी इहनूं संगत मिलदी जिस तरह दा इहनूं त्राशन ते सवारण वाला मिलदा है।

भी जे तू मन करके परमात्मा नु याद करना शुरू करे बुढ़ापे दे अंदर ते रब फेर भी बौड़ी करेगा, रब फेर भी आन के तेरी सार लेगा, खबर लेगा। पर असे ते ना जवानी दे अंदर ना बुढ़ापे दे अंदर, जेड़े तुहाडे विचों रब्बी पेंडे दे राही बन के चल रहे ने उन्हां नु करोड़ करोड़ वार नमस्कार भी ते उन्हां नु वधाई भी। चल तुसी रहे हो, फायदा तुहाडा है, पर वधाई तुहानू गुरु घर वालों मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुसी चलते रहे हो ना। उन्हां दा की करोगे जेड़े तुरे ही नहीं, उन्हां दा की करोगे जेड़े चले ही नहीं है। फिर बंदा बुढ़ापे दे अंदर जाके पछताउंदा बड़ा है, ते पछताउंदा होया ना फिर एक गल कहिंदा है, रब जी जे मैनू तू थोड़ा जिहा समा होर देवे ते मैं तेनू जाप ही लवां, थोड़ा जिहा समा तू होर देवे। भगत कबीर साहब की बाणी विचों एक वचन मैं होर तुहाडे सामने रखा। भगत जी कहिंदे ने, अमल सिरानू लेखा देना, आए कठिन दूत जम लेना, क्या तैं खटिया कहां गवाया, चलो सिताब सिताब मैंने जल्दी, चलो सिताब दीबान बुलाया, दीबान मैंने कचहरी, एक लाए दीबान। पढ़ते हो ना रोज जपजी साहब दे अंदर, चलो सिताब दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया। ते बंदे दा सुभा है रिश्वत लेना ते रिश्वत देना, क्योंकि सुभा ही बन गया है रिश्वत खाना ते रिश्वत देना। इन्हें मौत दे सामने भी हाथ जोड़ के अपनी अरदास रख दिती, बेनती कर दिती, मौत रानी मेरी तेरे सामने एक अरजोई है, एक जोदड़ी है, ते अरजोई मेरी ये है, करूं अरदास गांव किच बाकी, मैं तेरे सामने करदास करदा मौत रानी, मेरा कुछ पिंडा दा लेना देना उगराई करना व्यार प्यार अजे बाकी है, करूं अरदास गांव गांव मैंने पिंड गांव किच बाकी, ले उन बेर आज की राती, ये मैं तेरे नाल वैदा करदा अज दी रात मैनू रहन दे, मैं अज दी रात सारा लेखा जोखा मुका लवांगा। ये जेड़े मैं बोल तुहाडे सामने रख रहे हैं बाणी दे वचन ने भगत फरीद कबीर साहब दे। आख्या करूं अरदास गांव किच बाकी, लेहूं नबेर आज की राती, ते रिश्वत देनी चाहुंदा है किच भी खर्च तुम्हारा सारो, जेड़ी मैं आज उगराई करांगा ना पिंडां दा लेना देना व्यार प्यार वही खातियां ना खातियां नूं वेखना है, उगराई करनी है, जो मैं उगरावांगा उहदे विच्चों कुछ मैं खर्च चाह पानी दा तेरे लिए भी रख देंगा। भगत जी कहन लगे, किच भी खर्च तुम्हारा सारों, सुबह नमाज सराए गुजारो, ते सवेर दी नमाज मैं तेरे नाल राह दे विच पढ़ांगा, अज दी रात रहिंदे। मैनू फिर एक अदीब दा बोल चेते विच आया, उह कहिंदा उस वकत वकत मांगा, जब वकत तंग आया, मन की मशीनरी ने काम करना सीखा, जब पुरजे पुरजे में जंग आया। वह कहिंदा उस वकत वकत मांगा, जब वकत तंग आया, जद वकत रिया नहीं फिर वकत मंगदा है, जद वकत अति नेड़े आ गया तंग आ गया मिलना नहीं फिर वकत मंगदा है, वकत है वकत दी संभाल नहीं, वकत बीत गया है ते वकत मंगदा है, वकत मैंने समा समा कोले, समय दी कदरो कीमत नहीं, समय दी संभाल नहीं, समा हथों निकल गया है ते फिर मंगदा है अरदास कर करके कुछ समा दे ताके मैं अपना आपा सवार लवां, मेरी ना मनो किसे बुलारे दी ना मनो, जिदी गोद विच बैठे हो उदी ते मननी पैगी ना, उदा बोल ते झूठा नहीं ना, मेरा ते ज्ञान अधूरा, मेरी कोई दलील अधूरी, मेरी दित्ती उदाहरण नू कोई दूजा काट कर सकदा है, पर बाणी ते अधूरी नहीं ना, ते बाणी दे वचन ही मन लो, मेरे ना मनो बाणी दे ही मन लो। उदों वकत मंगदा है जदों वकत मुक जांदा है, ते जद वकत हुंदा है उदों वकत नू रोलदा है, मिट्टी दे अंदर रोलदा है, ए कूड़े दे पा वकत नू गवांदा है, वकत नू संभालदा ही नहीं। खिमा चाहवांगा मैं सारा सारा दिन चुगली निंदा ईर्षा करदियां लोकां नू वेख्या है, जिथे चार वीर चार भैणां इकट्ठियां होके बैठियां होण उन्हां दे कोल खलो जाओ, दखल अंदाज ना करो, बिल्कुल भोले बन के उन्हां दे नेड़े बह के गल्लां बातां सुनो, कोई रब दी चर्चा नहीं चलदी,
कोई रब वाल ध्यान नहीं, सारा दिन किसी ना किसी नूं केंद्र बिंदु बना के उहदी मिट्टी कुट्टी जांदी। फलाने दी नूं इस तरह, फलाने दी धी इस तरह, फलाने दा कारोबार इस तरह, फलाना आप इस तरह।

फरीदा थियो पवाही तब जे साई लोड़ें सब एक छिज है बिया लताड़िया है ता साई दे दरवाड़िया है।

अल्लाह वर्षों में हो जाए मिला तिना सजना तुटो नहीं ने हो पिजो सिजो कंबली अल्लाह वर्षों में हो जाए मिला तिना सजना तुटो नहीं ने हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप लड़ीवार कथा सरवण कर रहे हो भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों। भगत फरीद साहब जी दे दो श्लोक आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए और ये दोवें श्लोक बड़े डूंघे ने, बड़े रहस्यमय ने। अगर उपरों उपरों अर्थ करोगे तो मन दुबदा दे अंदर अवच्छ जाएगा। गहराई दे अंदर जाके मुतालिया करोगे ना दोवां श्लोकां दा तो गल स्पष्ट हो जाएगी भगत जी कहना की चाहते ने। पहला श्लोक है फरीदा गलिए चिकड़। एक एक अखर बड़ा रहस्यमयी है। कहन लगे गलियां दे अंदर चिकड़ है। आरंभ विच मैं एक बेनती होर करदा चला, गुरबाणी नूं एक्सप्लेन करन वाला, गुरबाणी दे अर्थ भेद खोलन वाला, उहदे विच हजार ऊण ताईयां हो सकदियां ने। गुरबाणी दा श्रोता उहदे विच वी अनेक खामियां हो सकदियां ने। मैं इस तरह अर्ज करां कि सानू गुरबाणी दे अर्थ ना करने आउण गल वखरी, तुहाडे विचों किसे श्रोते दी पकड़ विच बाणी ना आवे इह वी गल वखरी है। पर बाणी है नरोल सच दा खजाना। बाणी दे संबंध विच मन दे अंदर इह शंका पैदा कदी नहीं करना कि गुरबाणी दा कोई वाक अधूरा है, कोई बचन अधूरा है। हां वह बचन साडी पकड़ विच नहीं आ रहा, यह गल है। उथों तक साडी समझ दी उडारी, समझ दी परवाज नहीं जा सकी, यह गल है। आरंभ विच ही हजूर कह रहे ने आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। परमात्मा सचा है, यह परमात्मा की बाणी भी सची है। वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोय। ये बेनती करन दी मैनू लोड़ क्यों पई? एक पासे असी मन रहे हां कि गुरबाणी नरोल सच दा खजाना है। ये पखा चलदा बंद कर दो, की है आवाज जी आउंदी कोई? एक पासे असी मन रहे हां कि गुरबाणी नरोल सच दा खजाना है,

मिठिया रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद का आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है कि बाहरों मेरे सिर दे उत्ते बजी हुई पग मैली ना होए। हकीकत है कि मनुख नूं जितनी खबर बाहर दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बाहर दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब दी तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब दी तमन्ना यह नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहिदी है। इते सब नूं पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नूं वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहिदा है। इह किसे विरले विरले नूं पता है, सब नूं नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बाहर मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बाहरों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल, अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है। इतनी सारी मैल ते ओ वी मेरे अंदर, मैं ते समझदा सा नहीं है पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं ही दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनदा है तो ओ ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने, अवतारी तेरेबरी पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिदा है, साफ चाहिदा है। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनू कुछ ज्ञान है, बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। ओ मैल चाहे तन दे उत्ते या फिर तन दे उत्ते पए होए कपड़िया दे उत्ते, उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा। गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, ये गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है ओ बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है। जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे परिये हाथ पैर तन देहे पानी तोते उतरस के है। ये बाहर दी मैल है। अगर हाथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लैओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लैओ मैल उतर जाएगी। परिये हाथ पैर तन देहे पानी तोते पानी दे नाल तो लो उतरस के है, लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गोन लई है ओ तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कह लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाएंगे साफ हो जाएंगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नू धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नू बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापा कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना उह पाप आया है, अपराध नहीं आया। इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं है, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे परिये मत पापा कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपन वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, भावे दोवें गुणा दोवें दोष दोवें तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असीं शुरू कर देने आ उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ कड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नूं ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसी दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानदा। बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानदा ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਨ ਆਰਾਮ ਪੂਰਵਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੋ ਪਾਪ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदा चला, डॉक्टर इकबाल तो इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसी होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकत अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर विच जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावें गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्म दिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर पावे जैलसी है, अंदर पावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं बधाई देण दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत ते कुशल है। ये जानदा है कि खुशी दा मखौटा कदों पाउणा है ते कमी दा मखौटा कदों पाउणा है। खैर मेरा विशा नहीं सी, अंदर जो बुराई है उहदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जांदी है उहदा नाम अपराध। बस एक नुक्ता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध ताई बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने मुढ तो, उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दईए उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहणियां नूं आप कट देंदे हो दो टहणियां कट दे हो दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीआं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवी जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रह गए तो ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करते हैं, कहन लगे भरीए मत पापा कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरीए मत पापा कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण ना कोई सरफ ना कोई होर लिक्विड ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कै रंग, धुप जाएगी मायूसी दी लोड़ नहीं है। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तों बाद ओह मैल जाणी है उहदा नां है परमात्मा दे गुण परमात्मा दा चिंतन, ओह धुपै नामे कै रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करे दिनस अर रात, इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारो सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारो तो बिलकुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नू की असर पएगा। ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी, बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा होवे। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आण के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, ये मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड्डी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाईए। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे भी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने भी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाईए, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, भी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो इहदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाईए, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां सुच बनदी है अंदर दी, सच पाईए जे सच दे गुणा नू अपने हृदय विच वसा लवे। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाईए। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाईए। एक जगह ते मैनू गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होए, मत मैली होए जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, मैं सिर भी मिट्टी ने खा जाना, मैं ते सिर ते बत्ती पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जांदा है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होए इहदा ध्यान सानूं सारिआं नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रचना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अग्ञानता दे हनेरे विच ही इह खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे होवे मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावे ते नौंदा फिरे 68 तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नू बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे नाही राम एयाना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना। लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे दे नाल फर्क नहीं पैना, क्यों नहीं पैना, कहन लगे नाही राम एयाना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं,
ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ।

आनंद नूं मिलदा ही नहीं है, ना बालपन दे अंदर, ना जवानी दे अंदर, ते ना बुढ़ापे दे अंदर। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने, जाए पुछो दोहागनी, मैं उन्हां दोहागना नूं पुछदा प्रश्न करके, तुम क्यों रहन बेहाए, तुहाडे जीवन दी रात किस तरह बीती है, दुब्बर रात, पारी रात किस तरह बीती, तुसी पूरे जीवन दे अंदर कदी वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता ही नहीं, ते जद पूरा जीवन बीत गया, कदी आप चौपाई पढ़ी नहीं, सुखमनी साहब दे नाल जुड़िया नहीं, पंज बाणियां दा नेम नभाया नहीं, वाहिगुरु मंत्र जुबान ते लियांदा ही नहीं, कदी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आया ही नहीं, ते दुनिया दा दस्तूर वेख्या, जदो मरदा है डेड बाडी नूं चुक के, फिर ओदे कोल ग्रंथी सिंह नूं कह देंदे ने, बा हुकम ज्ञानी जी, एदे कोल बह के ना हुण लगातार तुसी सुखमनी साहब दा जाप करना है। पूरा जीवन आप मिलिया सी सुखमनी दा जाप जपन लई, पूरे जीवन दे अंदर ते पता नहीं कि सुखमनी की हुंदी है, ते मरण तो बाद हुण ग्रंथी सिंह दी सुखमनी इहनूं पार करेगी। पूरे जीवन दे अंदर आप ते भुल के कदी इहने जुबान ते वाहिगुरु मंत्र दा जाप लियांदा नहीं, ते मर गया ते हुण उहदे कोल बह के वाहिगुरु वाहिगुरु करो जी, ओह इहनूं पार करेगा, हुण दूसरे दा कीता इहनूं पार करेगा। मेरा मतलब ए नहीं है कि ओदे कोल बह के रोना धोना ही चाहिए है, या कथा कीर्तन या बाणी दा जाप ना होवे, होना चाहिए है, पर उन्हें आप भी ते जीवन विच कुछ कीता होवे ना, मुक्ति उन्हों तां मिलेगी जे उन्हें आप कुछ कमाया है, पहला मौत तो पहला पहला मन मुक्त होया है, ते तां मरण तो बाद जुना तो मुक्ति, ते मरण तो पहला पहला उह बंदरां दे अंदर बजा रहा है, ते हुण मुक्ति उन्हों मिले किवें, हुण उह बंदरां तो मुक्त होवे किवें। तो भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने, मैं उन्हां दोहागणां नूं मनमुखां नूं पुछदा कि उन्हां दा जीवन किवें बीतिया, जिन्हां ने सारी उम्र दे अंदर कदी परमात्मा दे नाल अपने मन दी सांझ पाई नहीं। इस श्लोक थोड़ा जिहा गहरा सी, मैं श्लोक नूं लै के तां तुहाडी सेवा दे अंदर कुछ बेनतियां रखण दा नमाना यतन कीता कि अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। अगर बारी बारी अर्थ करोगे ते कुछ होर बनदे ने, गहराई विच चले जाओ ते अर्थ सही रूप दे अंदर उगड़ के तुहाडे सामने आ जाणगे। भगत फरीद साहब जी कहना की चाहुंदे ने, अंग मुड़े मुड़ जाए, मन विच बेचैनी रहिंदी, उस मन विच जिहड़ा मन रोज रोज जुड़दा है पर एक दिन किसे मजबूरी दे कारण नहीं जुड़ पाया, किसे कारण करके अज सांझ नहीं बनी परमात्मा दे नाल, मन दे अंदर चिड़चिड़ापन रहा। जाए पुछो दोहागनी, तुम क्यों रहन बिहाए, उन्हां दोहागणां दा जीवन किन्ना दुखी होएगा, किन्ना बजर ते भारा होएगा, उन्हां दे जीवन दी रात किस तरह बीतदी है, जिन्हां ने कदी पूरे जीवन रूपी रात दे अंदर परमात्मा पति नूं चेते नहीं कीता, परमात्मा दे नाल सांझ बनाउण दा यतन ही नहीं कीता। तो ए सी भगत फरीद साहब जी दे मुबारक बचन, जिन्हां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां आप संगत दे सामू करन दा नमाना यतन। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी रहमत करन, सबना दे मना दे अंदर गुरमत ज्ञान दी बख्शिश और अज्ञानता दा हनेरा दूर करन दी कृपा करन। सहुरे ढोई ना लहै, पिए नाही थाओ, फिर वतड़ी ना पुछई, तन सुहागन नाओ। सोहरे पिए कंत की, कंत अगम अथा, नानक सो सुहागनी, जो पावे बेपरवाह, नानक सो सुहागनी, जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग

दी गई कथूरी गंद जो बन जांदे ना डरा जे शह प्रीत न जाए फरीदा कित्ती जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला वान दुख

तू साहिब सच्चे वेख एहो हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक गोद दा आनंद पा रहे हो, सरवण कर रहे सी गुरु के कीर्तनियां पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन श्री आसा जी दी वार दा। मन बिरतियां एकागर करिए ते जुड़िए चल रही लड़ी वार कथा जो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों चल रही है। भगत जी दा फरमान नाती तोती संभ ही सुती आए नचिंद, जीव इस्त्री ना तोके। संभ ही दा मतलब हुंदा है सज समार के अपना शिंगार करके, ना के कपड़े बदल के स्नान पान करके शिंगार हार करके सब कुछ करके ते निश्चिंत होके सौं गई। पति दे नेड़े नहीं गई, पति नू मिली नहीं है, पति नू याद नहीं फरमाया, पति दे मंदर विच प्रवेश नहीं कीती। हार शिंगार स्नान पान करन तो बाद फरीद जी कहन लगे निश्चिंत नचिंद। नचिंद दा मतलब निश्चिंत चिंता तो रहत, निश्चिंत होके सौं गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंगदी, हिंगदी बदबू बड़ी है ते दूसरे पासे गुलाब दे फुलां दी सुगंध भी बड़ी है, चंदन दी महक भी बड़ी है। जिमें चंदन दी महक अपने विच नवेकली थां रखदी है, हिंगदी दुर्गंध भी इस तरह अपनी जगह दे उते नवेकली थां रखदी है। अखिया तेरे मन दे अंदर हिंग वर्गी बदबू रही, रही कथूरी कंध ते कस्तूरी वर्गी महक तेरे जीवन दे अंदर पैदा ना होए। इस श्लोक नूं खोलण दा यतन करदा चला, बंदा धार्मिक शिंगार ते कर लैंदा है पर धार्मिक बनदा नहीं है। तन करके धर्मी बन जाना बड़ा आसान है, मन करके धर्मी बन जाना परम कठिन है। जिन्ना वेशभूषा पहरावे तन करके धर्मी दिसना आसान है, उन्ना ही मन करके धर्म दे अंदर प्रवेश कर जाना ये महान है। बड़ी दुनिया धर्म दे अंदर प्रवेश कर जाती है तन करके, मन करके प्रवेश नहीं करते। किसी दे हाथ दे अंदर गीता फड़ी होवे, गीता दा पाठ करदा होवे, तीन धारियां वाला तिलक ओहदे मत्थे उत्ते होवे, तेरे धागे दा जनेऊ ओहदे गले विच होवे, धोती उहने बद्धी होवे, इस तरह दा अडंबर वेख के आप कह दोगे कि इह हिंदू धर्म दे अंदर खास मनुख है। गीता हाथ विच फड़ी रह जांदी है, जे कोई गीता दा सलोक मन विच नहीं गया ते फिर उह सही हिंदू अजे नहीं बनिया। ठीक दूसरे पासे भावे कुरान दी तलावत करदा होवे, हाथ विच तस्बी रखदा होवे, मोढे दे उते मुसल्ला रखदा होवे, सूफ गल होवे, भावे उहदा लिबास काला होवे, सूफी संत अक्सर लिबास काला पाउंदे सन, मोढे दे उते मुसल्ला, मुसल्ला कहिंदे ने जिहड़े कपड़े नूं विछा के नमाज पढ़ी जानी है, मोढे ते मुसल्ला होवे, सुन्नत होवे, मुच्छां कटियां होण, बारों नजर पेगा मुसलमान है ते पक्का मुसलमान है, कट्टड़ मुसलमान है। पर जे कुरान दी एक भी आयत उदे मन विच नहीं वसी ते उस कुरान दी आयत दे मुताबक वो अपने जीवन नू गुजार नहीं रहा ते कदा मुसलमान है। भावे सिर दे उते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू रखिया होवे, हाथ विच गुटका होवे, ओ
और वेशभूषा चोला लम्मा होवे गिट्टियां तक चार माला सुटियां होण दाड़ा प्रकाश होवे पग दा रंग चंगा होवे पोच के बीबी पग बद्दी होवे वेखण नूं ते नजर आएगा बे सिख है ते सिख भी खास है सिख है ते सिख भी कट्टड़ है पर जे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा इक वी बचन उन्हें मन विच वसाया नहीं ते उन्हां बचना दे अनुसार वो जीवन दे अंदर चल नहीं रहा ते फिर कादा सिख है फिर ते बगले वाला ही लिबास से फिर कादा सिख है। तो मैं अक्सर एक बेनती करया करदा कि गीता दी जगदी हुई रोशनी मंदिर दी चार दवारी दे अंदर कैद होके रह गई है हिंदुआ दे जीवन दे अंदर गीता दे सलोक नहीं आए जे आए ने ते बड़े थोड़े हिंदुआ दी जीवनी दे अंदर कुरान दे पवित्र ग्रंथ दियां आयतां कुरान दी जगदी हुई शमा कुरान दी रोशनी मस्जिद दी चार दवारी दे अंदर बंद है मुसलमाना दे जीवन विचो कुरान नजर नहीं आउंदे अगर आउंदी है ते वह मुसलमान उंगलियां दे उत्ते गिने जा सकदे ने बड़े थोड़े खिमा मंग लवां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा महान ज्ञान प्रकाश ते ए जगदी हुई सच्चाई दी शमा गुरुद्वारे दी चार दवारी दे अंदर बंद है साडे जीवन विचो बाणी दा कोई बचन नजर नहीं आउंदा और मेरा बोल शायद तुहाडे मन नूं चोट करदा होवे हकीकत है दुकान ते बह के यही चेहरा कोई होर रूप बटा लैंदा है गुरुद्वारे दे अंदर यही चेहरा होर हुंदा है धर्म यह नहीं है कि चलो गुरुद्वारे जाना है बह के दो घड़ियां सुनना है जां सुनाउना है मत्था टेकना है ते हाथ विच दात्री फड़ के रखनी है जिहड़ा दुकान ते आ गया रगड़ के धर देना है छिल ला लैनी है या कारोबार दे अंदर दूसरे दा हक खाना है वधीकी करनी है नफरत करनी है ईर्षा करनी है सारा दिन चुगली सारा दिन निंदा अगर ये सब बुराइयां मन दे अंदर मौजूद ने ते फिर सिख ता हां पर विखावे दे सिखां हकीकत वे सिख नहीं है सिखी केवल बारले पहरावे दा नां नहीं और ये बेनती मैं अक्सर करता ही रहना क्यों करता रहना क्योंकि साडा ध्यान बार जुड़दा है पहरावे दे उत्ते जुड़दा है अंदर नहीं जाते गुरबाणी दे नेम गुरबाणी दे नुक्ते गुरबाणी दे सिद्धांत अपने मन विच वसाओ ते कारोबार करदिआं वक्त वेखदे वक्त बोलदे वक्त सोचदे वक्त चलदे वक्त तुहानू गुरबाणी दे

जिन श्रिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सृजन हार तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारावारया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारया

नानक होशी पी सच सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दिना देहो दर्श नानक बलहारी

जियड़ा अग्न बराबर तपै पितर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती खम अवगुण भरे एक गुण नाही